नमस्ते सीताराम अस्सलाम वालेकुम स्वागतम सब कोई वेलकम वेलकम वेलकम टू संगीत की आवाज द वॉइस ऑफ म्यूजिक आई विल बी फॉर द नेक्स्ट couple hours or so playing for you the best of Bollywood music. Hope you guys will stay tuned and enjoy the program on the number one station on the world wide web, Lehman Radio. Firstly, I must apologize for the late start.